कथ भीत न जानत महादेव को कहत सदस्य बहु निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध जीती बरनत भिन्न भिन्न तोह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंग भयो राब कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी अत भुज खान बह रत दीनी कहु फूल राजा हो बैठा कहु सिमट भय शंकर कैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव आद जुगाद स्वरूप सजम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अबार असिख संघरो दोट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस्तोज तव सरणी परे तिनके दोष दुख तुह मरे

करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीबन बाजा। दास जान करो कृपा करो मोहे, हर परामया नु दवान तोहे। अपना जानो करो प्रतपारा, तुम साहि मैं किंकर थारा। दास जान द हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कब तक बेदनाना। कृष्ण जत्था मत त्रित्र चारो, चुक होए कबले।

ग्रंथ सकल पूर्ण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाएंगे है जब ते तुमरे तब ते को अंक त्रे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै वो भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो हे बखाने ओ दोहरा

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज सेती मन बजिया वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्दों तां गावो हरी केरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना।

अनहता सर्वज हाउ सहस्तव नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूरत नना एक तोहि सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस्तव गंध विचलत मोहि सामा जोत जोत है सोए तिसना चानन सामा चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए ज्योतिष भाव है सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लो बित मरो अंदर मोहि आई प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग को होए जाते तेरा ना वासा रागौड़ी पूर्व महला चौथा काम क्रोध नगर भ भरिया मिल साधु खंडल खंडा है पूर्व लिखत लिखे गुरपाया मन हल मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर डंडौत पुन वड्डा है रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिने अंतर हो मैं कंडा है ज्यों ज्यों चलै चबह दुख पावह जमकाल सह सिर डंडा है हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन मरण भव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर गुरु सुख खंड ब्रह्मंडा है

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोइना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूपया पार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल कीचे दोस्त।

हरंगी हर नाम दिलाया, हरंगी हर नाम प्रभ पाया, हर गोविंद हर प्रभ केरा, हर हृदय मन तन मीठा लागा, मुँह मस्तक भाग चंगेरा, लोभ विकार जिन मन लागा।

चरण पखार करूं गुर सेवा मन चराम भोग छोड़या पत बादंकारा मान सोई जो होग संत टैल सोई है लागा जिस मस्तक लिखिया लिखोग कहो नानक एक बिंदु जाय वर्ण करने जोग टोडी महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सुभा चिंता लाए हमारी रहाओ अवर न सूझे दूजी ठारो हार भरियो तो द्वारी लेखा छोड़े लेखे छूटे हम निर्गुण लेहो बारी साध बख्शेंद सदा मेहरबाना सब न दे आधारी नानक दास संत पाशे भरियो रख लियो हे बारी टोडी माला पंजवा रसना गुण गोपाल निध गायन सांत सहजो रस मन उपजो सगले दुख पलायन रहाउ जो मांगे सोई सोई पावे सेव हर के चरण रसायन जन्म मरना दोहूं ते छूटे पव जल जगत तुरायन खोजत खोजत तत बिचार्यो दास गोविंद परायण अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण टोडी महला पंजवा निंदक गुर कृपा ते हट्यो पर ब्रह्म भय दयाला शिव के बाण सिर काट्यो रहो काल जाल जम जो न साके सच का पंथा साट्यो खाद खर्चत कृष्ण खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा पूतु आखिन पितर अपना किया पाया आगम निगम कहे जन नानक सब देखे लोग सुबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे सा संग भजन कर स्वामी ढाकन को इक हरे रहो अनक छिदर बहुत के छुटकत थामन जाही करे जिसका बहुत देश राधे खोटे संग खरे गली सैल उठावत चाहे ओए उहां ही है तरे जोर सगत नानक नाही प्रभ राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याए ओ कार कुठार पित बातन ताय उखधार के नाउ रहो तीने ताप निवारण हरा दुखन ता सुख रास ताको बिघन को लागे जांकी प्रभागे अरदास संत प्रसाद बैद नारायण करण करण प्रभेक बाल बुद्ध पूर्ण सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप धारण ग्रह पर ब्रह्म स्वामी वसदी कीनी आप रहाऊ जिसके से फिर

तेरो नाई सो जानी मोरी रहाऊ, आपन राम न जिनो खिनुआ, जो पराई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन न बिसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो। सो संचो जद भूख तसायो, अमृत नाम तो सा नहीं पायो।

हर हर जाप ताप व्रत नेमाम, हर हर त्याय कुशल सब खेमाम, आचार बिहार जात हर गुनिया, आनंद कीर्तन हर सुनियाम। कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब कुछ तिसके ग्रह में आया। टोडी महला पंजवां कर चौथा, धूप दे के ओंकार सतगुर प्रसाद। रूड़ो मन रंगो लोड़े, गाली हर न्यू न होए रहो, टंडेंदी दर्शन कारण बीती बीती पेखा। गुरमिल परम गवाया हे, ए बुध पाई मैं साधु कन्नो, लिख लिखिया तुर माथे।

रहाउं दय देश राव रया जस्तुमरा अंतर्जामी सदा हजूरो जो तुमरा जस गावे करते से जन कबू न मरते चूरो तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बसूरो सुख संबद भोग।

न सकुम्भ प्रीतम दर्शन देखन गोतारी मन आसुर हऊ। सिमरु नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनासु। पूर्ण भार ब्रह्म सुदाते अविनाशी विमल जां को जासु। संत प्रसाद मेरे पूर्व मनोरथ कर कृपा भेटे गुणतासु। शांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक प्रगास। टोडी महला पंजवा। हर हर पदत पावन जी प्राण मान सुदाता अंतर जामी मन को पावन रहाऊ। सुंदर सुगुर चतर

राम संग नाम देओ, राम संग नाम देओ, जन को प्रतिज्ञा आई। एकादशी व्रत रहे काहे को तीर्थ जाई। पंच नाम देओ सकृत समत पए, गुरमत राम कहे को नाम बकुंठ गए। तीन छंदे खेल आशे रहो, कुम्भार के कर हांडी आशे, राजा के कर सांडी गो, बामन के कर रांडी आशे, रांडी सांडी हांडी गो, बाणी के कर हींग आशे, पैंसर माथे सिंग गो।

तेरा कर कला तेरे है कारण दुदाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जारू सर्व कला पर पूर्दी सजत कता नानक दासन।

0: अष्टपदी सिमरियो सिमर सिमर सुख पावो
1: काल कलेश तन माय मिटावो
0: सिमरियो जास बसंबर एक
1: नाम जपत अगनत अनेक
0: प्राण सिमरत सुध अखर
1: कीने राम नाम के अखर
0: इनका एक जिस जीव सावे
1: ताकि महिमा गनी न आवे
0: संखी एक दस तुहारो
1: नानक उन संग मोए उधारो
0: सुखुनी सुख अमृत प्रभ नाम
1: भगत जना के मन विश्राम रहो
0: प्रभ के सिमरन गर्भ नाम बसे
1: प्रभ के सिमरन दुख जाम न से
0: प्रभ के सिमरन काल पर हरे
1: प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे
0: प्रभ सिमरत कष्ट बिघन न लागे
1: प्रभ के सिमरन अंतिम जागे
0: प्रभ के सिमरन पाव न व्यापे
1: प्रभ के सिमरन दुख न संतापे
0: प्रभ का सिमरन साध कै संग
1: सर्व निधान नानक हर रंग
0: प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ नेदा
1: प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध
0: प्रभ के सिमरन जप तप पूजा
1: प्रभ के सिमरन बिन से दूजा
0: प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी
1: प्रभ के सिमरन दरगह मानी
0: प्रभ के सिमरन होए सो भला
1: प्रभ के सिमरन सुफल फला
0: सिमरे जन आप सिमराए
1: नानक ताके लागो पाए
0: प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा
1: प्रभ के सिमरन उदरे मूचा
0: प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे
1: प्रभ के सिमरन सब की सुझे
0: प्रभ के सिमरन नहीं जम तरासा
1: प्रभ के सिमरन पूरन आसा
0: प्रभ के सिमरन मन की मल जाए
1: अमृत नाम हृदमाए समाए
0: प्रभु जी बसे साध की रसना
1: नानक जन का दासन दसना
0: प्रभु को सिमरे से तनवंते

0: प्रभु राजे
1: को सिमरे से सुखवासी
0: प्रभु को सिमरे सदा विनासी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला
0: नानक जन की मंगेर वाला
1: प्रभु को सिमरे से पर उपकारी
0: प्रभु को सिमरे तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे
0: प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे
1: प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता
0: प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरे तिन अंध कनेरे
0: प्रभु को सिमरे बसे हर नेरे
1: कृपा ते अनदिन जाग
0: नानक सिमरन पूरे भाग
1: के सिमरन कार्य पूरे
0: प्रके सिमरन कबु न चूरे
1: प्रके सिमरन हर गुण बानी
0: प्रके सिमरन सह समानी
1: प्रके सिमरन निश्चल आसन
0: प्रके सिमरन कमल विगासन
1: प्रके सिमरन अनंत चुनकार
0: सुप्राप सिमरन का अंत न पार
1: सिमरे से जन जन को ब्रह्मया
0: नानक तिन जन सरणी बया
1: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए
0: हर सिमरन लग भेद पाए
1: हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते
0: हर सिमरन नीचा गुण जाते
1: सिमरन धारी सब धरना
0: सिमर सिमर

0: कर संसार
1: दिन प्रभजाता
0: नानक उन जन चरण पराता
1: करो बेंती पाप रव सब जान
0: अपना किया आपे माने
1: आपे आप कर तनवेरा
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा
1: पाप स्यान सगल तेरा है
0: सब कछ जाने आत्म की रहत
1: भावे तिस लए लड़ लाए।

0: हरी।
1: ये प्रसाद छत्ते ही अमृत खाहे,
0: तिस ठाकुर को रख मन माए।
1: ये प्रसाद सुगंध तिन लाव है,
0: तिसको सिमरत परम गत पावे।
1: ये प्रसाद बसे सुख मंदर,
0: तिसे त्याए सदा मने अंदर।
1: ये प्रसाद ग्रह संग सुख बसना,
0: आठ पै सिमरो तिस रसना।
1: ये प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा त्याए त्यावन जोग।
1: ये प्रसाद पाठ पटम भरंडाव है,
0: तिसे त्याग कतावर लुभावे।
1: ये प्रसाद सुख से सोई जय,
0: मन आठ पहरता का जस का विजय।
1: प्रसाद तुझ सब को मान,
0: मुक्ता को जस रसन बखाने।
1: ये प्रसाद तेरो रहता धर्म,
0: मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
1: जी जबत दरगह मान पाव है,
0: नानक पद से ती कर जावे।
1: ये प्रसाद आरोग कंचन देही,
0: निवला हो तिस राम स्नेही।
1: ये प्रसाद तेरा ओला रहता,
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत।
1: प्रसाद तेरे सगल शिद्र ठाके,
0: मन सरणी पर ठाकुर प्रगता के।
1: ये प्रसाद तुझ को ना पहुंचा,
0: मन सा सा सिमरो प्रभु ऊचे।
1: ये प्रसाद पाई तो लब दे,
0: नानक ताकी भगत करे।
1: ये प्रसाद अपोखण पहरी जय,
0: मन ति सिमरत क्यों आलस की जय।
1: ये प्रसाद असव हस्त असवारी,
0: मन तिस प्रभ को कभु ना बिसारी।
1: ये प्रसाद बाग मिलख तना,
0: राग परोई प्रभ अपने मना।
1: तेरी मन वंत बनाई,
0: उठत बैठ सती से ते आई।
1: ते आए जो एक अख है,
0: नानक तेरी रखे।
1: ये प्रसाद करे पुन बहुदान,
0: मन आठ पैर कर तिसका ध्यान।
1: ये प्रसाद तू आचार बिहारी,
0: तिसका को सास सास सितारी।
1: ये प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
0: सो प्रभ सिमरो सदा अनूप।
1: ये प्रसाद तेरी नीकी जात,
0: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात।
1: ये प्रसाद तेरी पत्र है,
0: गुर प्रसाद नानक जस कहे।
1: ये प्रसाद सुने कन नाद,
0: ये प्रसाद देखे विस्माद।
1: ये प्रसाद बोले अमृत रसना,
0: ये प्रसाद सुख से जय बसना।
1: ये प्रसाद हस्त कर चल है,
0: ये प्रसाद संपूर्ण फल है।
1: ये प्रसाद परम गत पाव है,
0: ये प्रसाद सुख से समावे।
1: ऐसा प्रभु त्याग और कत लागो,
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो।
1: ये प्रसाद तू प्रकट संसार,
0: इस प्रभ को मूल न मनो विसार।
1: ये प्रसाद तेरा प्रताप,
0: हे मन मूर्तता को जाप।
1: प्रसाद तेरे कार्य पूरे,
0: इसे जान मन सदा हजूरे।
1: प्रसाद तू पाव है साच,
0: रे मन मेरे तुता से ओ राच।
1: प्रसाद सब की गत होए,
0: नानक जाप जपे जप सोए।
1: आप जपाए जपे सो नाओ,
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ।
1: कृपा ते होए प्रगास,
0: प्रभु दया ते कमल विकास।
1: सो प्रसन्न बसे मन सोए,
0: प्रभु दया ते मातु तम होए।
1: सर्वदान प्रभु तेरी माया,
0: आपो कछु न किन्हु ल।

0: साध के संग मुख उज्जवल होता
1: सत्संग मल सगली कोत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सो ज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा
1: सत्संग सब होत निबेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग कुपर जतन
0: साध की महिमा वर्ण कौन परानी
1: नानक साध की शोभा ब्रह्माए समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फूले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: सत्संग अमृत रस पूंचा
0: सत्संग होए सब की रेन
1: साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग न कतहु तावे
1: सत्संग स्थित मन पावे
0: साध के संग माया ते भिन्न
1: सत्संग नानक प्रभ सो परसन
0: सत्संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग महापुनीत
0: सत्संग किस्यो नहीं बैर
1: साध के संग न भीगा पैर
0: साध के संग नहीं को मंदा
1: सत्संग जाने परमानंदा
0: साध के संग नहीं होता
1: साध के संग तजे सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साध के संग न कब होता वे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस्त अगोचर लहे
1: साधु के संग अजर सहे
0: साध के संग बसे थान ऊंचे
1: साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़े सब धर्म
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल उधार
1: साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार
0: साधु के संग सो धन पावे
1: जिस धन ते सबको बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु के संग पाप पलायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गाम
1: नानक साध के संग सफल जनम
0: साध के संग नहीं कश काल
1: दर्शन पेटत होत निहाल
0: साध के संग कलोखत हर
1: साध के संग नरक पर हर
0: साध के संग इह उहा सहेला
1: साध संग बिचरत हर मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावे
1: साध के संग ना बिरथ जावे
0: पार ब्रह्म साध रित बस है
1: नानक गुदरे साध सुन रस है
0: साध के संग सुनो हर नाओ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते बिसरे
1: साध संग सर पर निष्कर
0: साध के संग लगे प्रभु मीठा
1: साधु के संग कट कट डीठा
0: साध संग पे आज्ञाकारी
1: साध संगत पई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग
1: नानक साध मिटे संजोग
0: साध की महिमा भेद न जान है
1: जेता सुने के तब ख्याने
0: साध की उपमा ते गुण ते दूर
1: साध की उपमा रही परपूर
0: साध की शोभा का नाही अंत
1: साध की

0: ज्ञानी सदा
1: निर्लेपी
0: सदा निर्दोख
1: ज्ञानी
0: के दुष्ट समान
1: जैसे राज रंग को लागे तुल को आने
0: ज्ञानी के तीर्ज एक
1: जो बसपा को दे।

0: जला।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास,
0: जैसे तरु करे आकाश।
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सदर समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी के नाई अभिमान।
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा,
0: मन अपने है सब ते नीचा।
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए,
0: नानक जिन प्रव्याप करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना,
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी छीना।
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कस बुरा ना पया।
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसे।
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आसन,

0: का कथा न जाए यदि अक्षर
1: ब्रह्म ज्ञानी सरब का ठाकुर
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित कौन बखाना
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी स सृष्ट का करता
1: ब्रह्म ज्ञानी स जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल अकार

0: बस को मंदा
1: प्रसाद विख्या पर हर है
0: मन की बासना मन ते टर
1: जत पंच दोख तेरा है तो
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
0: विषन की माया ते होए पिन
1: कर्म होवे नहि कर्म
0: तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
1: फल की इच्छा नहीं बाछ
0: केवल भगत कीर्तन संग राच
1: मंतन अंतर सिमरन गोपाल
0: सब पर होवत कृपाल
1: आप दृढ़ अवर है नाम जप पावे
0: नानक होए प्रश्न क्रम गत पावे
1: भगवती भगवंत भगत का रंग
0: सगल त्यागे दुष्ट का संग
1: ते बिनसै सगला भरम
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
1: संग पापा मल खोवे
0: तिस भगवती की मत उत्तम होवे
1: भगवंत की टहल करे नित नीत
0: मंतन अर्पे बिसन परीत
1: चल हृदय बसावे
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
1: वो पंडित जो मन पर बोध
0: राम नाम तम सोद
1: राम नाम सारस पीवे
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवे
1: की कथा हृदय बसावे
0: सो पंडित फिर जो न आवे
1: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल
0: सुख मैं जाने स्थूल
1: वर्णा को दे उपदेश
0: नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान
0: जो वर्णा में जपे को नाम
1: जो जो जपे तिसकी गत होए
0: सा

0: ब्रह्म का निवास
1: जिसका नाम सकराम दास
0: आत्म राम तिस न द्रही आया
1: दास संतन पाए ते न पाया
0: सदा निकट निकट हर जान
1: सो दास दर गए परवान
0: अपने दास को आप कृपा करे
1: इस दास को सब सो जी परे
0: संग आत्म उदास
1: ऐसी जुगत नानक राम दास
0: की आज्ञा आत्म हितावे
1: जीवन मुख सो कहावे
0: तैसा हरख तैसा उस सो
1: सदा आनंद नहीं वियोग
0: तैसा सुन तैसी उस माटी
1: तैसा अमृत तैसी बिखाटी
0: तैसा मान तैसा अभिमान
1: तैसा रंग तैसा राजान
0: जो वरताए साई जुगत
1: नानक पूरक कहिए जीवन मुकत
0: ब्रह्म के सगले ठाओ
1: जित जित कर राखे तैसा तिन नाओ
0: आपे कर्ण कराओ जोग
1: प्रभ पावे सोई फुन होग
0: तसो आप होए अंत तरंग
1: लखे ना जाए पार।

0: पति
1: इसके अंतर राज अभिमान
0: सो नरपति हो स्वान
1: जो जाना मैं जो बनवंत
0: सो होवत विष्टा का जंत
1: आप कर वंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन प्रमावे
1: भूमिका जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा ज्ञान
1: कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: नानकिया मुकट आगे सुख पावे
1: होए कर कर बावे
0: त्रिम समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मान ऊपर करे आस
0: पान भीतर ताका होए विनाश
1: सबते आप जाने बलवंत
0: मैं होए जाए पसमंत
1: किसे न वदे आप अहंकारी
0: परम राय तिस करे कुहारी
1: गुरुप्रसाद जाका मिटे अभिमान
0: सो जन नानक दरगह परवान
1: कोट कर्म करे हो तारे
0: श्रम पावे सगले बिरथारे
1: तपस्या करे अहंकार
0: नरक सुरक फिर फिर अवतार
1: जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगे को कैसे गवे
1: आप जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट न आवे
1: सर्व की रेंजा का मन होए
0: को नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: तब इसको सुख नाई कोए
1: जब ये जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन मैं फिरता
1: जब तारे को बैरी मीत
0: तब लगने चलना ही चेत
1: जब लग मोह मंगन संग माए
0: तब लग धर्म राय दे सजाए
1: कृपा ते बंधन टूटे
0: गुरु प्रसाद नानक हो छूटे
1: सहज खटे लख को उठता वे
0: त्रिपत नावे माया पाछे पावे
1: भोग बिख्या के करे
0: नै त्रिप्तावे खप खप मरे
1: संतोख नहीं को राजे
0: सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे
1: नाम रंग सर सुख होए।

0: कंठ परोए
1: सिमर सिमर प्रभु सोए
0: नानक विघ्न लागे कोए
1: मन में कर निरंकार
0: कर मन मेरे सत व्यवहार
1: रसना अमृत पियो
0: सदा सुरेला कल जियो
1: नन्हो पेक ठाकर कारण
0: सा संग मिसे सब संग
1: तम चलो मार्ग गोविंद
0: मिले पाप जपिए हर बिंद
1: हर कर्म श्रवण हर कथा
0: हर दरगे नानक उजल मथा
1: ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाए
1: नाम जो करे विचार
0: से धनवंत गने संसार
1: मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एक एक पहचान
0: सोची जाने
1: नाम संग जिसका मन मान्या
0: नानक तिने निरंजन जानिया
1: प्रसाद अपन आप सुजै
0: किसकी जानो तृष्णा बुझे
1: संग हर हर जस कहत
0: सर्व लोक हर जन रहत
1: कीर्तन केवल बख्यान
0: समय सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: जिसकी कटिए जम की फासा
1: ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक किसे न लागे दुख
1: हर प्रभु मन चित आवे
0: सो संत सुहेला नहीं लुलावे
1: अपना कृपा करे
0: सो सेवक को किसे डरे
1: जैसा सा तैसा दृष्टाया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सोदत सीजिया
0: गुरु प्रसाद तत् सब बुझिया
1: जब देखो तब सब किस मूल
0: नानक सो सुखम सोई स्थूल
1: नह किस जन्मे नह किस मरे
0: आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: आप सगल में आप
0: अनिजुगत रस्थाप उठाप
1: अग्रासी नाही किस खांड
0: तारं तारे ओ ब्रह्मंड
1: अलख अपेव पुरख प्रताप
0: आप जपाए ता नानक जाप
1: जाता सु सो बावंत
0: सगल संसार उदरे तिन मंत
1: सेक सगल उदारन
0: रखे सेवक दुख विसारन
1: आपे मेल ले कृपाल
0: गुरु का सब जपे निहाल
1: सेवा सोई लाग
0: जिसनो कृपा करे बड़ पागे
1: नाम जत पावे विश्राम
0: नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो करे सु प्रभु कह रंग
0: सदा सदा बसे हर संग
1: पाए होवे सो होए
0: करने हार पछाने सोए
1: किया जन मीट लगाना
0: जैसा सा तैसा दृष्टाना
1: जिते उजे तिस माए समाए
0: सुख निधान।

0: अंधकार
1: दीपक प्रकाश
0: ध्यान
1: में मार्ग पावे
0: काहे
1: बिलाइया
0: देवन हार और त्याग तू तिसे चितार
1: करे सोई सुख मान
0: भूला काहे फिरे अजान
1: कौन बसताई तेरे संग
0: लपट रहे हो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जप हृदय माहे
0: नानक पासे ती कर जाए
1: इस वक्र को लैं तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: भगवान लियो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तोल
1: नाद खेव संत है संग चाल
0: और त्याग बिख्या जंजाल
1: तन तन कहे सब कोय पार बिरला वापार
0: साध
1: के धोए धोए पियो
0: साध को अपना जियो
1: साध की धूर करो स्नान
0: साध ऊपर जाइए गुरबान
1: साध सजावट भागी पाई है
0: साधनते
1: साधु राख है
0: अमृत रस चाख है
1: गहे संत है दर आया
0: सरफ सुख नानक
1: मृतक कौ जिवालन हार सर्वदान जाकी दृष्टि माहे
0: सब
1: कुछ तिसको करने जोगा
0: इस बिंदु सर हुआ न होगा।

0: करे खिन माहे
1: पूरन सब भाए
0: नाना विध कर वंत बनाए
1: अपनी कीमत आपे पाए
0: सबगण तिसके सब तिसके ठाओ
1: जब जब जीवे नाना
0: नाम के तारे सगले जानता
1: नाम के तारे खंड ब्रह्मांड
0: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
1: नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान
0: नाम के तारे आगास पाताल
1: नाम के तारे सगले आकार
0: नाम के तारे पुरिया सब पवन
1: नाम के संग उदरे सुन श्रवण
0: कृपा जिस अपने नाम लाए
1: नानक चौथे पद में सो जगत पाए।